0: उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे।
1: وعندهم قاصرات الطرف أسراب
0: और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी।
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था।
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा।
1: هذا وإن للطاغين لشر مآب
0: ये नेमतें तो फर्माबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है।
1: جهنم يصلونها فبئس المآب
0: यानी दोजख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है।
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें।
1: وآخر من شكله أزواج
0: और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

FM 100 100 100 100 100

0: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
1: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
2: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
3: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
2: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
4: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
5: One Station 100 FM।
2: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
3: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
2: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
1: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
3: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
2: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
1: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
3: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: वहाँ HBL शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
4: आई जस्ट डोंट वांट एंड अप समवेयर दैट फील्स द सेम।
5: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
4: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
5: to filming,
4: to flying.
5: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
6: The UMT effect. Step into tomorrow, today.
7: 11.9% 11.9%
8: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
9: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
10: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99%
11: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G,
12: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
15: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबिन जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
16: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
17: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
18: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
17: अरे HBL है तो फिक्र कैसी।
19: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
20: This program is brought to you by
21: Sir Subs Pakistan Challenge की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
22: एंड
23: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
24: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
25: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
10: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
11: एंड
17: डबल रेड

0: Have a nice drive with FM 100.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Bashir bhai, paidawar aur fasal ki sunao.
3: Na paidawar ke acche daam, na beej khad ke paison ka intezam.
2: Are, HBL hai to fikr kaisi?
4: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
5: 11.9%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
9: शराइत ज़वाबित लागू है।
10: 11.99%।
11: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
12: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, Grand, bold and hard to miss.
13: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
13: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
12: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
13: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
12: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
14: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
15: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और Schwabe सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
14: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहाँ HBL.
2: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ.
3: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम.
2: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
4: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें. अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा. जहां ख्वाब वहां HBL. शराइत ज़वाबित लागू हैं.
1: This program is brought to you by
16: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
17: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
6: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.

0: iTunes, FM 100.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
2: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
3: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
2: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
4: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
5: One Station
6: 11.99%
7: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
8: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
10: शराइत ज़वाबित लागू है।
11: 11.99%। अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
12: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
13: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
12: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
13: एग्जैक्टली, Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-सीटर विद 3 यूजेबल रोज, कैप्टन सीट्स एंड अ ड्यूल पेन सनरूफ फॉर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस।
12: अच्छी है, पर मुझे तो 8-सीटर चाहिए थी।
13: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
12: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
13: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: One Station
6: 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
2: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
3: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
2: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
4: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
14: This program is brought to you by
15: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef।
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
17: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: मुझे तो 8 सीटर चाहिए थी।
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए पैलेसेड स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
3: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
4: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
3: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance, to filming, to flying.
4: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
5: The UMT effect. Step into tomorrow, today.
6: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
7: 11.9% 11.9%
8: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
10: 11.99%
11: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
12: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रूपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
14: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
14: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
16: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
17: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
16: अरे HBL है तो फिक्र कैसी।
18: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
19: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
4: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
3: अरे HBL है तो फिक्र कैसी।
5: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
9: एंड
10: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
11: We'll be right back.

0: sound. Always wanted. Wanted. Wanted.
1: FM 100.
2: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
3: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
2: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance, to filming, to flying.
3: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
4: The UMT effect. Step into tomorrow, today.
5: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
6: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
5: अरे HBL है तो फिकर कैसी?
7: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
13: 11.9%, 11.9%।
14: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
15: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
16: शराइत और ज़वाबित लागू है।
17: 11.99%।
18: उम्र जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
19: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ ₹100 का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
6: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
5: अरे HBL है तो फिकर कैसी?
7: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
14: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
16: वाटिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: बशीर भाई पैदावार और फसल की सुनाओ
6: ना पैदावार के अच्छे दाम ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम
5: अरे HBL है तो फिकर कैसी
7: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा जहां ख्वाब वहां HBL शराइत ज़वाबित लागू है
20: आम चीजों पर समझौता क्यों करें श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
21: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
22: शौकत खानम कराची की तकलीफ
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
5: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: एंड
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
0: एंड
7: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: एंड
8: डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते।
9: It's 10 AM. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
10: 11.9%
11: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
12: शराइत और ज़वाबित लागू है।
10: 11.99%।
13: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: वाटिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर, रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
15: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99% HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: 11.9% 11.9%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
4: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: वाजिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
9: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
10: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
12: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
13: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
12: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
14: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
12: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
14: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
14: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
12: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
12: आइए वेट से आगे का सोचें।
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
16: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: वन स्टेशन
4: 11.99% 11.99%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
2: 11.99% मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: वन स्टेशन 100 FM
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: ਮਾਝੀਗਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਵਿਨਰ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਨੀ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਾਰ ਈਵੀ ਬਾਈਕ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਵਾਟਿਕਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰੋ ਤੇ 13 ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਟਿਕਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਈ ਆਲ ਨਿਊ ਵਾਟਿਕਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਰਿਸ਼ਸ ਹੇਅਰ ਨੈਚੁਰਲੀ
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: बाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है
2: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
3: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320 2758 492 पर भी राब्ता कर सकते हैं

कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

से भी जाए कुर्बान हम 100 दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं, मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं। तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं, मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया।

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे।

0: उम्र जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
5: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: मेरे। कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: FM
8: 100 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
9: अजान ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
10: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई, फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके यहां और मुकर्रर है, फिर भी ये काफिर तुम इस बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही अल्लाह तो है, वो तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ है। सूरह अनाम।
1: FM 100।

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराएं नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड न आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 1-6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूम के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
4: This program is brought to you by
5: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
6: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन, शौकत खानम कराची की तकमील।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: नया जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदें, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
1: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
9: शौकत खानम कराची की तकनीक।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

Dennis. That's the killer.

0: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
1: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.

0: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: आजाने असर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएम 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज असर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, मोमिनो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्शिश देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सूरह अनफाल।
2: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
1: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ.
5: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम.
4: अरे HBL है तो फिक्र कैसी.
6: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें. अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा. जहां ख्वाब वहां HBL. शराइत व ज़वाबित लागू हैं.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
4: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
5: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
4: अरे HBL है तो फिक्र कैसी।
6: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
7: 11.9% 11.9%
8: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
9: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
10: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। शरायत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99%।
11: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
2: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
3: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
2: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance, to filming, to flying.
3: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
4: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
10: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
9: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
11: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
12: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर, रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिश इज हेयर नेचुरली।
14: 11.9%
15: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
16: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
17: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
18: शराइत और ज़वाबित लागू है।
14: 11.99%।
19: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
10: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
9: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
11: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
20: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम, ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
0: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
21: This program is brought to you by
22: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
23: The country's number one choice for the best music variety.
24: Best music variety.
23: FM 100. This party jam.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. Aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
2: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है, और space भी काफी है।
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
2: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
2: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
3: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
4: 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
8: अल्हम्दुलिल्लाह, मीज़ान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीज़ान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
11: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
10: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
12: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
13: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
16: Biggest hit.
15: Only on your favorite radio. FM 100. FM.

0: Santa Claus.
1: This program was brought to you by
2: Sir Subs Pakistan Challenge की audio पर अपनी video upload करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, electric bike और शानदार कीमती इनामात
1: and
3: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
4: आज ही donate करने के लिए 0800-11555 पर call करें या हमारी website www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
1: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
1: एंड
6: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
1: एंड
7: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
1: एंड
7: डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदें पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते
1: It's 7 PM. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
8: Bashir bhai, paidawar aur fasal ki sunao.
9: Na paidawar ke acche daam, na beej khad ke paison ka intizam.
8: Are, HBL hai to fikar kaisi?
10: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा जहां ख्वाब वहां HBL शराइत ज़वाबित लागू हैं
11: I just don't want to end up somewhere that feels the same
12: It's not the same bro it's different it's an effect
11: What effect Everything is about creating an impact. From fashion, to finance, to filming, to flying.
12: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
13: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
14: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek organization.
15: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
16: अल्हम्दुलिल्लाह मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात तो फिर कहीं और क्यों जाएं तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक

0: पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HVL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HVL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
7: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
6: अरे HBL है तो फिक्र कैसी।
8: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
9: वाटिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी तो जीतती नहीं जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते तेरा सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
14: स्टैंड बाय फॉर एक्शन।
15: You are about to embark on a journey to the heartbeat of Pakistan.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हो, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह बनी इसराइल

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी तीन दिन इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा क्यूआर स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
9: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और रब्ता करें 0300-555-001 पर।
10: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
11: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
12: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
11: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
13: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
14: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
15: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
14: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
16: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
15: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
14: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक्स से ये कम नहीं है।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
15: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
14: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
15: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
14: आइए वेट से आगे का सोचें।
18: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
19: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. Bashir bhai, paidawar aur fasal ki sunao.
2: Na paidawar ke acche daam, na beej khad ke paison ka intezam.
1: Are, HBL hai to fikr kaisi?
3: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: Alhamdulillah, Mizan Bank hai Pakistan ka wahid bank, jisne behtreen bank hone ka azaz 6 martaba hasil kiya. Jab aapko Pakistan ka behtreen bank de Islamic banking ki behtreen khidmat, to phir kahin aur kyun jaye? To aaj hi Mizan Bank mein account khulwaye aur experience kare behtreen banking sahuliyat. Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: बशीर भाई, पैदावार और फसल की सुनाओ।
7: ना पैदावार के अच्छे दाम, ना बीज खाद के पैसों का इंतजाम।
6: अरे HBL है तो फिक्र कैसी?
8: गोदाम रसीद फाइनेंसिंग के साथ फसल की पैदावार तस्दीक शुदा गोदाम में रखवाएं और रसीद की मालियत का 70% तक फौरी कर्जा हासिल करें। अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच तशरीफ लाएं और करें अपनी खुशहाली का ख्वाब पूरा। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
9: One Station 100 FM.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.

and every night on Music FM. This is the Music. Music. FM 100.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा. अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0011 पर.
3: Be ready for a great journey
4: with Melodious Companion.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है
2: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
4: शौकत खानम कराची की तकनीक
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें

I love it.

हाँ, क्या मजे की बात याद आ गई। कागज की एक नाव बनाई, कागज की एक

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: FM
2: 100. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सुबह की नशियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आप FM 100 से सुनेंगे तिलावत कुरान पाक। 24वां सिपारा, फमन अजलमु। तिलावत कौरी वही जफर कासमी, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, आवाज शमशाद अली खान।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے